फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति

0: भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

आज का चिंतन। माधव कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे करने में शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं चलता, कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो

तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवा देते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। इसका भाग 242 आज प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर और पुनः 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका भाग 7 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7

नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आज सुबह आप सुनेंगे जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। संपादन रीमा जोशी का। प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनते हैं सुबह 11:00 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1:00 सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर बाद 2:30 पर और 3:00 कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत। संपादन सहयोग काजल भदरगी का है और प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम को आप सुनेंगे 6:30 पर झरोखा। 6:35 पर समय रहेगा संध्या रंजन का। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00। 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8:00 हवा महल के अंतर्गत झलकी मुंशी इतवारी लाल। लेखन नरेश मिश्रा का। निर्देशक विनोद रस्तोगी। झलकी का नाम मुंशी इतवारी लाल। आठ बजकर 45 पर संध्या समाचार संध्या आप सुनेंगे और रात्रि 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल विश्वास पर। संगीतकार अनिल विश्वास। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात्रि 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये था आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 242।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने राम

रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्रीराम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, पंडित जी एक बार फिर स्वागत है आज की इस कड़ी में। आपका नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी।
1: पंडित जी बताइए कि आपने बहुत सारी फिल्मों में बांसुरी बजाई है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जानकारी है, कुछ श्रोताओं को जानकारी नहीं है, तो हम ये बता दें कि फिल्म देश परदेश है, फिल्म बेताब है जिसमें आपकी बांसुरी की सुरीली तान है, जब हम ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे। तो आप बातचीत के दौरान जिक्र कर रहे थे धर्मेंद्र साहब के बारे में, देव साहब के बारे में।
2: जी, सबसे पहले तो धर्म जी बहुत जिंदा दिल इंसान थे और मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, उसमें एक पंजाबी भी है।
1: जी जी।
2: तो मेरे साथ तो पंजाबी में ही बात करते थे।
1: अच्छा, कौन कौन सी 9 भाषाएं आपको? हिंदी,
2: भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी तो, और भी शायद कोई छूट गया, मैं बोलता हूँ। तो मेरे नाल उन्होंने तो पंजाबी गल करते सन मेरे नाल।
1: वाह।
2: तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे सनी को बेताब में, तो सनी भी स्टूडियो में आया हुआ था और धर्म जी भी आए थे। एक बड़ा मार्मिक एक दृश्य था फिल्म का। उस फिल्म में सनी देओल का बड़ा प्यारा सा एक डॉग था, कुत्ता, और जो उसमें विलेन थे वो सनी को मारने के लिए उस कुत्ते को गोली मार देते हैं, और सनी उस क्योंकि प्यार उसको बहुत ना
1: गले से लगा के
2: रो रहा है, और उसमें मेरी बांसुरी। और केसी लॉर्ड बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए।
1: जी जी।
2: पंचम दा के राइट हैंड एकदम।
1: जी।
2: केसी लॉर्ड ने एकोलाइट लगाया था और मैंने भी दिल चीर के बजाया डी के बांसुरी में।
1: जी।
2: और वो ऐसे कि एक एक स्वर उस कुत्ते के खून बह रहा है और यहाँ बांसुरी में से आंसू निकल रहा है।
1: जी जी। तो वो क्या यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं?
2: वो तो इम्प्रोवाइज था। जब हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं ना
1: जी,
2: तो हम लोग जैसे कि राग में इम्प्रोवाइज करके एक एक नोट कर करके वो नहीं करते, हम लोग वो सीन के मूड को देखते हैं।
1: जी।
2: जैसे समझिए कि कुत्ता मर रहा है और पीछे बांसुरी बज रही है।
1: ओ।

0: वाह, सचमुच दिल चीर देने वाली,
1: दिल चीर देने वाला वो सीन था। जब टेक ओके हो गया, बांसुरी के अलावा 40-50 वायलिन एक नोट को होल्ड किए हुए थे और उसके ऊपर बांसुरी बज रही थी, और साथ में वाइब्रोफोन बज रहा था। और किर्सी लॉर्ड तो पारसी थे
0: जी,
1: और उनका छोटा भाई था भजी लॉर्ड, भजी ना बोलते हैं
0: जी,
1: किर्सी जी गुजर गए, भजी लॉर्ड अभी जीवित है
0: जी।
1: कमाल के लोग। और मैं तो खुद उनका दूसरे कारण से फैन हूं, क्योंकि रूप तेरा मस्ताना में जो उन्होंने एकॉर्डियन बजाया, तो वो सेंसुअलिटी एकॉर्डियन से कैसे पैदा हो सकती है ये उन्होंने बताया। और मनोहरी दास जैसे सैक्सोफोन प्लेयर
0: जी,
1: उस पे हावी हो गए वो, ये केसी लॉडी कर सकते हैं
0: जी।
1: तो धर्म जी इतने शेर दिल थे, और पुत्र कमाल कर दिता यार, तेरा जवाब नहीं। वो मैंने हंजू हंजू कहते हैं पंजाबी विच, आंसू को हंजू कहते हैं, ते कहते मेरे हंजू आ गए, अखा तो हंजू आ गए। बड़ा बड़ी चंगी बंसरी कहते हैं पंजाबी में, कहते बड़ा सुंदर बंसरी बजाया पंचम दा, ओए पंचम ओ कितों लाया ये मुंडे नू, ये लड़के को कहां से लाया। तो उस दिन से उसके बाद उन्होंने स्टूडियो बनाया सनी, उस स्टूडियो का नाम ही रखा उन्होंने सनी,
0: जी, जी।
1: सनी सुपर साउंड। मैं जब भी जाता था, और धर्म जी कभी शूटिंग से आके थोड़ा रिलैक्स होके पांव फैला के बैठते थे, तो मैं उनसे जाके हाथ मिलाता था, क्योंकि मुझे ये शौक था पहलवानी का थोड़ा।
0: अच्छा,
1: तो मुझे मालूम था ये एक्चुअल रेसलर है
0: जी, जी।
1: और एक बार दारा सिंह को उठा लिए थे
0: जी जी, और फिल्मों में तो उनकी दहाड़ मशहूर है।
1: हाँ, तो उनके हाथ को जब मैं हाथ मिलाता था
0: जी,
1: तो लगता था कि मैं कुछ 10 हाथ का ताकत और की हाल है बोल के जब हाथ पकड़ते थे तो लगता था हाथ टूट जाएगा मेरा। उस अनुभव के वजह से मैं हाथ मिलाता था
0: जी जी।
1: ये जो पुराने एक्टर लोग थे, यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी
0: जी,
1: जब हमें और जीने की चाहत ना होती मैं बजाया मैंने, तो किशोर दा तो रुला दिए उस गाने को गा के, तो काका हम लोग बोलते हैं राजेश खन्ना को
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो काका उस वक्त भी जाके किशोर दा का पांव छू लिए। अब बताइए किशोर दा तो उनसे बहुत बड़े थे
0: जी
1: उम्र में, मगर इंडस्ट्री में पांव छूने का इतना रीत नहीं है, वो शास्त्रीय संगीत में है
0: जी,
1: उधर तो बस हाय हेलो हाय दादा नमस्कार प्रणाम करने का चलन कम है, मगर काका को मैंने अपने आंख से देखा किशोर दा का पांव छूते हुए कि दादा आज आपने जो गाया मिलन से भी कठिन जुदाई तुम्हारी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते
0: जी, जी।
1: तो दादा ने जिस गाने को भी छुआ उसको अमर कर दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रोग्राम मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने कह दिया था कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बजाता नहीं, मगर बजाने में गया, तो चिंगारी जब गा रहे थे तो ऐसे सुर लगाए कि उसके अंत में एक पीस आता है, देखिए

0: ये रन मैं भूल ही गया।
1: जी जी क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और दादा भी दादा, किशोर कुमार, किशोर कुमार, उनके जैसा व्यक्तित्व। बहुत दिन से इंडस्ट्री सोच रहा है कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए, मगर उनका रोल करेगा कौन?
1: ऐसा जिंदा दिल इंसान,
0: ऐसा जिंदा दिल, ऐसा कॉमेडियन, ऐसा एक्सेंट्रिक और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या करेगा। जो डाकिया डाक लाया को साइकिल में बैठ के गाया उन्होंने,
1: हरफन मौला, तभी तो उनको कहा जाता था।
0: स्टूडियो में साइकिल लाना पड़ा, बोले साइकिल में जाऊंगा तभी, नहीं तो नहीं गाऊंगा।
1: जी जी गजब
0: गजब के आदमी
1: बिल्कुल। तो ये तो किशोरदा की बातें हो गई, और देव साहब से भी जुड़ी कुछ बातें।
0: देव साहब से मुझे मिलवाया था बप्पी दा ने, बप्पी लाड़ी ने, मगर एक फिल्म में मैं पहली बार जो मिला उनसे वो आनंद आनंद, सुनील आनंद, जो बाद में चल नहीं पाए, तो लॉन्च किया था उसको। और बीती जाए जाए जाए जिंदगानी, ये गाना था किशोरदा का
1: जी,
0: और अभिजीत का डुएट था। और अभिजीत को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे किशोरदा
1: जी जी,
0: जैसे बड़ा गुरु होता है
1: बिल्कुल।
0: तो वहां भी देव साहब के, मैं बहुत खुश हूं इस बच्चे की बांसुरी सुनकर, जिंदगी। तो वो हर म्यूजिशियन के पास जाके देव साहब तारीफ करते थे। और उसके बाद देश परदेश, राजू, हम लोग राजू भाई कहते हैं राजेश रोशन को, उनका म्यूजिक था देश परदेश में
1: जी।
0: तो वहां भी मुझे पहचान गए, अरे तू कैसा है, क्या हाल है। तो उनके अंदर जो रोमांसिंग विथ लाइफ, उन्होंने जो किताब लिखी है वो सचमुच पढ़ने लायक किताब है
1: जी जी,
0: रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद
1: जी।
0: तो देवताओं का आनंद उनके अंदर था,
1: तभी तो सदाबहार हीरो कहे जाते हैं आज भी।
0: देव साहब जैसा कोई नहीं होगा।
1: उस फिल्म में आपकी बांसुरी है ना?
0: मेरी बांसुरी बैकग्राउंड में है।
1: हाँ, तो उसका कुछ टुकड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
0: याद है, इम्प्रोवाइज्ड था पूरा।
1: अच्छा,
0: पूरा इम्प्रोवाइज्ड। टीना मुनिम को उसमें लॉन्च किया था
1: जी जी।
0: और हाँ मुझे याद है, उसमें एक सीन में देव साहब रोमांस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका, उन्होंने उम्र को तो कभी माना ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मरने के बाद कोई फोटो ना खींचे। उनके मरने के बाद का कोई फोटो कहीं नहीं है, लंदन में गुजरे
1: जी जी।
0: हाँ, और चुपचाप बोले थे कि मेरा अंत्येष्टि कर देना चुपचाप, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, भगवान के आदमी थे। तो उसमें बजाना था तो चंचल प्रकृति का बजाना था, जैसे हम लोग फिल्म में बजाते हैं तो कैसे होता है कि इतना सा पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है
1: बिल्कुल।

0: इसको ट्रिल बोलते हैं
1: जी जी
0: और
1: अच्छा।
0: फ्लटरिंग ये है ये फ्लटरिंग है और डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा तो हम लोग का तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु कल पे एक बार जरा तुक तुक सुना दीजिए तुक तुक में गॉड गिफ्टेड है मेरा शिष्य एक सेकंड उसको सुनिए
1: जी
0: क्या क्लैरिटी है देखिए
1: गजब अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है
0: जीते रहो कल्पेश जैसे वो बोलता है कि मैं भाग्यवान हूं ऐसे गुरु मिले मैं कहता हूं मैं भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला
1: क्या बात है
0: जो इतना सुरीला
1: तो ये चंचल प्रकृति की तान थी बांसुरी की
0: जी जो देश प्रदेश में मैंने बजाया
1: जी
0: तो जब ट्रिल बजाया तो बोले कि उनका वही अंदाज क्या बात है
1: जी
0: बहुत अच्छे ट्रिल तो बड़ा अच्छा एक एक शब्द उनको मालूम था कि इसको ट्रिल कहते हैं कितना म्यूजिक में वो डीप थे
1: जी जी
0: आपको तो मालूम ही है रफी साहब ने कितना रिटेक किया था गाइड के गाने के लिए
1: जी जी
0: उसमें
1: जी।
0: दुख नहीं आ रहा था
1: हाँ फिर वो
0: रोए थे फिर
1: बैठकर रोने पर फिर वो इमोशन आया था जी
0: मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आज बेताब का ये शब्बीर कुमार का गाना पर्वतों से आज मैं टकरा गया ये हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए।

0: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और ये सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सैम मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also witness the exchange of Memorandum of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The day's engagements will conclude with a state banquet hosted by President Prabowo Subianto in honor of the Prime Minister. Later, Prime Minister Modi will have engagements at the Complex Parlemen Republic Indonesia, highlighting the importance of parliamentary cooperation between the two countries. He will also participate in a community event where he will interact with members of the Indian diaspora. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
3: We were doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation, and we are also hopeful for opening up new areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in 5 sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course educational and health sector. sectors. More or less every area of human endeavor will be covered during the Prime Minister's visit.
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry, established by Prime Minister Narendra Modi in 2021, has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. External Affairs Minister S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his 4-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman, from July 5th to 10th. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Modi to the King and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Dr. Jaishankar also interacted with members of the Indian community in Bahrain. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir, POK, the Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on July 9th if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that at its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The committee has called upon residents throughout POK and members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9th. In football, Spain stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 clash at the Dallas Stadium last night. Mikel Merino scored in the first minute of the second half stoppage time to secure the victory. Spain advanced to the quarterfinals for the first time since winning its only World Cup title in 2010 in South Africa. They will now face either the USA or Belgium at the Los Angeles Stadium on Friday. And that is the end of this news bulletin.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्य प्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने नौ चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पांचवी और आठवीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीर बेग इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अंगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रिंग्यूंग किम को 5-0 से पराजित किया। आपको समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एक लाभ योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की खोखरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब आपको सुनवाते हैं हमदर्द फिल्म का गीत, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार प्रेम धवन और संगीतकार अनिल विश्वास।

ये आवाज़ थी पारुल घोष की। हमारी बात इस फिल्म का गीत था। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और अनिल विश्वास का संगीत था।

मुकेश का गाया ये गीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन था, उन्हें याद करते हुए हमने आज कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत आपको सुनवाए।

कार्यक्रम हम है राही प्यार की, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। एक बार फिर से स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म से आशा भोसले और रफ़ी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। शकील बदायूनी ने लिखा है ये गीत और नौशाद का

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद के संगीत से सजा शकील बदायूनी।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम ही राही प्यार की इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए आपको सुनवाते हैं गंगा जमुना फिल्म का ये गीत, शकील बदायूनी के शब्द, नौशाद का ही संगीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर।

शकील बदायूनी की शब्द रचना नौशाद के संगीत से सजा अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में, फिल्म का नाम लीडर।

0: मॉर्निंग
1: छोड़
0: गुड मॉर्निंग
1: छोड़ हाथ प्लीज
0: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
1: अरे 1 2 3 4 मेरा हाथ छोड़
0: 1 2 3 4
1: मैं कहती हूं
0: फोर अरे 1 2 3 4 1 2 3 4
1: तुमके थप्पड़ रखते
0: आवरक डावरक
2: डावरक
0: डावरक आवरक
1: अरे इधर डावरक आवरक
2: अब बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
0: कॉपी गेस व्हाट वाटर सैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग पटा हो जंतु

0: बूटा, ये लांग लांग बूटा, ये पाइप वाला हुका, ये सूटा बूटा बूटा सूटा हुका बुका, वेरी वेरी गुड डा लाइक यू मेरी जान।
1: गोपी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में। शैलेंद्र के बोल हैं, सलील चौधरी का संगीत।

नया दौर इस फिल्म का गीत आपको इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में साहिल लुधियानवी की रचना, ओपी नैयर का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत नया दौर फिल्म से आप सुन रहे थे और ये था कार्यक्रम हम है राही प्यार की का आखिरी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुबह के 8 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: इस तरह बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते, और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
5: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
6: India and Indonesia are very close and strategic partners.
7: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
8: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
4: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
8: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा

0: जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
6: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Shundip Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
7: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course educational and health sectors.
6: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's three-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Shandeep Bandashgupta, Akashvani News, Jakarta.
5: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive.
8: सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग
9: For 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8.5 lakh cooperatives across the country, this is a day they had been waiting for over the past 75 years. Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the Government of India. This decision by the Prime Minister has served to elevate the country's cooperative movement to a new stage.
8: सहकारिता आंदोलन को नए स्टेज पर ले जाने का काम
5: He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, trust treasurer Govind Devgiri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir POK, the Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if the conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. More from our correspondent.
10: The committee has called upon residents throughout BOK and the members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9. Police brutality by Pakistani forces has intensified on Sunday against the people protesting against the severe crackdown by Islamabad and the sweeping arrest of more than 600 civil rights activists in Pakistan-occupied Kashmir, with reports of shelling, firing and clashes emerging from several parts of Muzaffarabad. Thousands of people took to the streets on demanding an end to the blockade.

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक विविध भारती से। आज है 1 जुलाई 2026 से 7 जुलाई 2026 वन महोत्सव का सप्ताह का आज अंतिम दिन है, लेकिन प्रकृति की सेवा का संकल्प आज से और भी मजबूत होना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर एक पौधा लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें, एक या उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए, और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। पेड़ हमें शुद्ध हवा, ठंडी छाया, फल, औषधियाँ और जीवन देते हैं। इसीलिए अनावश्यक पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, जल की बचत करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और अपने आसपास की हरियाली को सुरक्षित रखने का संकल्प करना चाहिए। लिया आपने ये संकल्प? याद रखिए, आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल उपहार बन सकता है। आइए वन महोत्सव सप्ताह के समापन पर प्रकृति संरक्षण को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाएं और धरती को और अधिक हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। और अब आपको सुनवाते हैं

उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें।
2: श्रोताओं, अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

श्रोताओं, इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं बेबफा इस फिल्म का गीत। कुमार सानू, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की आवाजों में समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
4: सुनिधि चौहान और सोनू निगम की युगल स्वरों में अगला गीत। नितिन रायकवार ने इस गीत को लिखा है, संदीप चौटा ने संगीत दिया है, फिल्म का नाम है मस्त।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ

0: आयुर्वेद हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस
1: जी
0: सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
2: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए
4: कहिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी,
4: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
5: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।
8: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं क्या दिल ने कहा इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। संजय छैल की शब्द रचना और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं, और रात को 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुनना नहीं भूलिएगा। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, ये है जलवा फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, सुधाकर शर्मा के बोल, संगीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया का।

0: ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। रहना है तेरे दिल में इस फिल्म का गीत सुनिए। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में समीर की रचना, हरीश जयराज का संगीत।
1: मुझे क्या है?

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे रहना है तेरे दिल में फिल्म से। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, हैरिस जयराज ने इस गीत की धुन बनाई थी। अब आपको सुनवा रहे हैं फिदा फिल्म का गीत। समीर के ही बोल हैं, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें।

कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति फिल्म अंदाज से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण की बनाई तर्ज़।

अभिनेता दिलीप कुमार की पुण्यतिथि, भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अदाकारी, सादगी और अमर किरदार सदैव भारतीय सिनेमा के इतिहास को रोशन करते रहेंगे। उन्हें हमारा विनम्र नमन। और अब से कुछ ही देर में आज आप कार्यक्रम सुनेंगे आज की फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। अभी आप गीत सुन रहे थे चित्रलोक में अंदाज फिल्म का, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम

0: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एस यू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
1: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
2: आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
1: इसे तकदीर का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
2: आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती।
1: मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है। इससे पहले कि आप जब मेरे दरमियान कभी नाचने वाली दीवार खड़ी हो जाए, चलिए कहीं भाग चले।
2: या आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए।
0: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब, वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
1: और मत पियो देवदास।
2: क्या?
1: कुछ ही दिन वे पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे।
2: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश ना आने पाए।
1: यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
2: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
0: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार। साल 1966।
3: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूँ वो बदबख्त मैं हूँ जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती, वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं, ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगा दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए, फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है, मैं पूछता हूँ, ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए।
1: शंकर मैं यहां से चली जाऊं, हमेशा के लिए चली जाऊं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूं बस करो शंकर।
3: हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से।
0: साल 1951, फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है।
4: गाना खत्म हो गया सर का।
1: गाना खत्म हो गया? बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज।
4: दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता हूँ।
5: चंपा, चंपा, बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो एक ही रुपया देकर तड़का दिया करता, उसने 2 रुपए दिए भैया को।
4: अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी।
5: आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना, ऊंचा सुनने लगे भैया आजकल, 10 नहीं 2 कहे थे 2।
0: लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी किंग के अपने छापे को निकाल फेंका और एक के बाद एक कई कॉमेडी भूमिकाएं की। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि अब हम कोई कॉमेडी संवाद सुनाने जा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जरा दिलीप कुमार का ये रोमांटिक संवाद सुनिए। जरा सुनिए कि दिलीप कुमार मीना कुमारी से अपनी अदाओं के जरिए कितनी रूमानी बातें कह रही हैं।
1: कब आए?
6: सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए।
1: हाँ, इतना बड़ा झूठ।
6: इनसे पूछ लो, ये मेरे गवाह हैं। तुम्हारे बिना एक एक पल सौ सौ साल का लगता है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजाकर इस दुनिया में भेजा है। आंखें जैसे झील में खिले हुए दो कमल, देखती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष खिल उठते हैं, और शर्माती हैं तो कलियों का सर झुक जाता है। रूपा, तुम्हारे इन जुल्फों की छाव के सिवा मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। रूपा,
1: ऐसी बातें करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। शंकर,
6: तुम चले जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए सौ सौ साल का हो जाएगा।
1: शंकर,
6: रूपा।
0: दिलीप कुमार की खासियत है अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाना और संवादों की ऐसी अदायगी कि लोग अश अश कर उठें।
7: मैंने लोगों का अधिकार छीना है। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। वाणी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया।
6: मेरा भाई मर गया।
7: अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर वाणी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं है। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं है। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले।
6: मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं। ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम है। ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं।
0: अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद।
8: ये तो
9: क्या
8: सुपरटेंट गुपरटेंट?
9: अरे क्या बकता है, गुड मॉर्निंग। छोड़, गुड मॉर्निंग छोड़ हाथ।
8: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4।
9: अरे 1 2 3 4 वाला हाथ हटा। मैं कैसे हूँ?
8: अरे 1 2 3 4 1 2 3 4।
9: तुमने थप्पड़ रखे।
8: एंटी फैन सेंटीमेंट।
9: क्या
8: एंटी फैन सेंटीमेंट?
9: अरे हाथ सेंटीमेंट।
8: डाबर के डाबर,
9: डाबर का
8: डाबर, डाबर का
9: डाबर। अरे डाबर बड़ा है अंग्रेजी बोलने वाला।
8: एंटी
0: और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से।
10: सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
11: तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने? बमन जी कागजात पर साइन करवा लीजिए।
10: हाँ जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेजिस्लेटिव चोर, तो जल्दी साइन कर दो। थोड़ा देख लो, और देख लो, देख लो, पर जल्दी। हाँ
11: तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे?
10: आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा? आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा? इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? क्यों सर?
12: पर ये लोग तो बटाटा था, तुम आते हो सिग्नेचर करके आए।
13: कौन लोग बटाटा था?
12: अरे यही लोग बटाटा था।
13: क्या बटाटा था?
12: कि तुम आते हो साइन करते है कागज पर।
13: हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब।
12: तो साइन नहीं करने का?
13: आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी।
12: तो बच्चे बता तुम्हें खेल ले जाओ,
13: तुम्हें भी खेल ले जाओ।
12: होता जाओ तो साहब जी का जेंडर बाबो।
0: अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगल-ए-आजम, सामना पृथ्वीराज कपूर से।
14: तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती हैं और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो।
15: ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें?
14: यकीनन।
15: तो फिर रादिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नाम निशान खो देता है।
14: यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
15: और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
14: तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
15: मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं।
14: मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघला कर एक रकासा के पैरों की बाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो। और तुम
15: और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
14: खामोश।
15: अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
14: इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी।
15: एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी।
0: फिल्म शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने।
16: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
17: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
16: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
17: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
16: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
17: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
16: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
17: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
16: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
0: सुभाष कही की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।
18: तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह?
19: और तुमने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई? वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
18: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
19: वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग।
18: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
19: समझ गया, हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल, उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ।
18: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
19: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का है शाम, आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
0: सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं।
20: सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा, नहीं अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा।
21: ए भाई, ए, ए, ए भाई, ओ भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का, बता जरा भाई, ये सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब।
20: सुधा थोड़ी देर हिम्मत कर जा, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, अरे इधर देखो क्या हो रहा भाई, अरे बुरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे, अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है, बुरी हालत है भाई, बचा लो, ओ भाई साहब, अरे कोई है, अरे कोई आओ, अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे, गाड़ी रोको, ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब, ए भाई साहब मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है, भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मेहनत कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, भाई साहब आपके बच्चे जिए, भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।
22: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती थी, दो लाइन, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबो हवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षेत्रों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जनारदेव के वन ग्राम काली माटी में गायत्री परिवार के तत्वाधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहाँ वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया की पूर्व सीएमओ डॉक्टर जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेट के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रुपए की लागत लगाकर 24,75,000 रुपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मॉनसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया की पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव के गवाह बनेगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर प्वाइंट, चीड़ प्वाइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावली स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में एमसीए, बीटेक और एलएलबी जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा आईटीआई के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: पीरियड्स नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की। उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
2: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना। कभी दो महीने के अंदर पीरियड आते हैं, तीन तीन महीने आते हैं, ये सिक्स मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
2: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चिन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
2: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
2: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम। एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
2: अच्छा, एक प्यार का नगमा।
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह से
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 110 120 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सेमेन काउंट, सेमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफिशिएंसी है, B12 हो, ये सब देकर, और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक ही चीज टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
0: जी,
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
0: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
0: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
1: अजीब दास्ता
0: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा,
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली, जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है
0: जी,
1: ऐसा मुझे लगता है।
0: जी
1: और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए? किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%।
1: हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज,
0: जी,
1: और बच्चियाँ लड़कियाँ खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे, तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाया आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स से, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे,
0: जी
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
0: और विटामिन डी धूप से मिलता है,
1: हाँ, सनलाइट,
0: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
1: बहुत कमी है,
0: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना,
1: नहीं नहीं जरूर, बहुत अच्छा गाना है,
0: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: तो डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का
0: तो
1: बहुत सारा योगदान
0: हाँ,
1: है।
0: तो और
1: और
0: क्या क्या डाइट्स ले सकते
1: हाँ,
0: हैं
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी?
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते।
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं
1: नॉइस,
0: खाना
1: हाँ,
0: चाहिए,
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन
1: ट्रांस
0: के
1: फैटी,
0: लिए मुश्किल है।
1: हाँ, ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है।

0: वो भी ओलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैक पैकेज फूड जो होता है, पैक पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
1: तो और आपने कहा कि शक्कर बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना
0: चाहिए? वो फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
1: जी।
0: हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
1: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर
0: खाएं। फल जरूर खाएं, और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ। अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
1: मीठा वो भी
0: मीठा हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
1: वो
0: है,
1: खा सकते हैं,
0: खा सकते हैं।
1: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
0: हाँ क्रॉनिक,
1: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है,
0: हाँ,
1: क्या निजात,
0: क्रॉनिक
1: कैसे
0: स्ट्रेस
1: निजात
0: होता
1: पाए?
0: है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट
1: जी
0: की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है, और ओलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
1: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
0: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
1: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: झिलमिल सितारों के
1: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14-16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय के साइड में 2 गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनलिके नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 28, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती
0: है। जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
1: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है
0: जी। तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक
0: जी। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो।
0: सुरमई अखियो में
1: नन्ना मुन्ना एक सपना,
0: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा रता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप IVF तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा IVF तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली IVF नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफ़र होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर IUI का सेटिंग करते हैं। IUI भी नहीं हुआ तो
0: IUI क्या है?
1: IUI है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। IUI जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, जो स्पर्मिया उसको जो बोलती है, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और IUI के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना।

0: हाई सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आयुआई हुआ तो वो फॉर IVF। IVF के तरफ जब जाते हैं तो IVF क्या होता है, तो IVF में ओम पिकअप करते हैं फीमेल का,
1: वो जो
0: और
1: परखनली
0: हाँ
1: पर
0: सिर्विच,
1: बच्चा है।
0: हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं। और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में ट्रांसफर
1: तो
0: करते हैं।
1: इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
0: हाँ पीरियड से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, और फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस,
1: जी
0: और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
1: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि ये क्या प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वो उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
0: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है,
1: हाँ
0: तकलीफ तो होती है उनको, लेकिन
1: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता?
0: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहती है। और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
1: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
0: नहीं अभी तो सब लैब टेस्ट टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
1: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
0: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन IVF जब फेल हो गया, वो लास्ट लास्ट है,
1: जी
0: लास्ट टप्पा है। IVF फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते।
1: जी। तो PCOD के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
0: हाँ होती है, PCOD में पीरियड्स ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है, ये भी होता है।
1: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
0: हाँ नींद
1: और
0: की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
0: कम
1: होती
0: हो
1: है,
0: जाती है स्टेंट में।
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
1: जी
0: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुखवस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?

0: ये पीसीओडी की तो सिस्ट पानी जैसे होता है उसका।
1: जी
0: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी,
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती
1: यूरिन के रास्ते से
0: है,
1: सफेद
0: यूरिन
1: पानी
0: के।
1: आता है ऐसा।
0: हाँ, वो अलग चीज़ है। यूरिन के रास्ते जो सफ़ेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
1: जी तो
0: हाँ,
1: उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
1: जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी
1: ये रात भीगी
0: नरगिस।
1: भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
0: हाँ
1: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ,
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: इसका परीक्षण सेल्फ परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म, ये है

0: ऐसा थोड़ा सा टच करके कुछ लगे हार्ड तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए, और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और
1: जी
0: ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
1: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
0: मेमोग्राफी कर
1: तो
0: मेमोग्राफी सोनोग्राफी या पेनेसी नीडल बायोप्सी पे
1: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से।
0: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
1: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत
0: मूड
1: होता है,
0: स्विंग्स होते हैं,
1: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का? कि अचानक किसी महिला को देखा है, अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
0: मेंटल स्ट्रेस,
1: तो इसका
0: बस
1: ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
0: उसका डाइट से ही, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन ही, शांत रहना है,
1: जी
0: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए।
1: जी
0: अच्छे
1: जी
0: से किताब पढ़ो, अच्छे
1: जी
0: से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है,
1: जी
0: हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
1: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
0: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से,
1: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं
0: करियर
1: हमारे श्रोताओं को?
0: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है,
1: जी
0: आराम से हो जाता है सब। और
1: जी
0: जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब
1: जी
0: बाहर
1: जी
0: निकलने के लिए।
1: जी
0: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
1: बिल्कुल
0: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
1: जी।
0: जीवन शैली।
1: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू
1: नमस्कार।
0: सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आवारगी इस एल्बम से, कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल, संगीत नरेश परेश का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में सुदर्शन फकीर की ये गजल।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकी पन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों में तेरा ही चेहरा इस एल्बम का गाना जय वालिया का लिखा और गाया हुआ संगीत ललित का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एल्बम का नाम है सिलसिले, जगजीत सिंह की आवाज, शब्दकार जावेद अख्तर, संगीत जगजीत सिंह का।

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज़, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज़, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

I go. Ding, ding, ding. Pili pili patri.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बेहजाद लखनऊ।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर भाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

0: सुना रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम किया करते
0: हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज़ में जासूस फिल्म का गाना भूल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में एहसान रिजवी के बोल हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी हैं, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन, हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएं सब उनके साथ घटित हो रही है, और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूं के बोल, नौशाद का संगीत। इस गाने में जो अभिनय है उसकी, उसमें आपको क्या विशेषता नज़र आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ जाई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़, कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ जाई है तो मनवा में खटक हुई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जैसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत ख़ास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब की कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो या जो आपको बहुत पसंद आया हो या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुग़ल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 के सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये एक कालजयी रोमांटिक गीत है, संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमती फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगल-ए-आज़म फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी, फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ये महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय, जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ, ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहां सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहां देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं, आवाज मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पाँचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सब के चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो उसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आंखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आज़ाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज़ है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर के साथ, जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है, और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथ ही लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आँख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज़ आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए, एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर, महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है, दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था, क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है, जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: पीपल People...

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट

0: सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 टूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध्य क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
3: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने

0: भी उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
4: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे

0: रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज दिया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल।

0: का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की, भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा, बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, इन सभी साथियों ने सुना चाहा है फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार, आशा भोसले की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है एसडी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है तेरे घर के सामने, और इस प्यारे से गीत को आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी ने, और गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है एसडी बर्मन का, और सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जूनले, आरती जूनले, अमलेश्वर महादेव घाट छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख मंसूरी, ये सभी साथी हैं, और ये साथी सुनना चाहते हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस

0: साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है. आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार.

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार। क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, सानंद रहे
2: जी, जी। और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप बदल ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कमी ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से ही पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगह से पता चला है।
1: लाइक, कमेंट, आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया
2: जी, इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव है वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
2: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी यहाँ आप लोग ना उलझ जाए।
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपने बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं। हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हैं, हम भी जी लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं
2: जी।
1: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं
2: जी। बिल्कुल
1: याद है
2: जैसे
1: आपको?
2: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
1: टेढ़ी खीर
2: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
1: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो हो गए। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलती ही नहीं थी। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो बस सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
2: जी।
1: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
2: थे, वैसे ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते थे।
1: तो कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती है
2: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे। जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए। और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास
1: बैठ जाता है,
2: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो की संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की किनारा कैपिटल नाम से।
1: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: करें तो ये ज़हन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। वो यूं कि गाँव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहाँ तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं।
1: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की, सुन लेते हैं गाना।
1: चलिए।
2: हाय राम।

0: ममता जी, आज के समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और
0: कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नहीं घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें।
0: जी।
1: और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक

0: होती हैं सोशल मीडिया पर, वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है, और कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
0: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है।
1: जी, तो पड़ जाता है।
0: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
1: हाँ,
0: वो भी अभी एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए, फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं, सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
1: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है, और कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
0: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे, और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुंचाएं हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हम हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं,
1: जी
0: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से,
1: जी
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं, पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी,
1: जी
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था।
1: बिल्कुल
0: कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे
0: कुछ
1: हैं।
0: लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं,
1: हाँ ये बात
0: कि
1: भी होती है।
0: फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है।
1: जी
0: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो
1: जी
0: किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
1: जी
0: जान
1: जान
0: लेते हैं
1: लेते हैं
0: कि हाँ ये
1: जी
0: किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें, और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है, और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं
1: जी,
0: और कुछ लोग
1: और
0: अपना डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो
1: जी, जी।
0: ये दिखाते हैं कि हमें देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम हैं, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल मीडिया पर नहीं आया है। और जिसमें हुनर हासिल है ना वो उसी कला को

0: जी
1: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही है कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मूल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं।

0: नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोलभाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोलभाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोलभाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई
1: जी
0: बार लोग जहां पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी
1: हाँ
0: वालों
1: जी
0: से
1: हाँ
0: अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो
1: हाँ
0: सब्जी
1: ये बात
0: वाले
1: तो थी
0: भी
1: जी
0: आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होते ही है ये
0: बिल्कुल
1: भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो हमें गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोलभाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात
1: बता
0: लिखी
1: दिया
0: है और
1: जी
0: हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसे ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें ऐसा
0: सुनते हैं
1: जी।

0: अब दीपा जी हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हर हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना, अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप जरा बताइए कि ये क्या कर रही है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है?
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पक रही है। देखिए जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये भी एक मुहावरा है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना है, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल ना होकर खुद को अलग थलग कर देता है तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे तो वहां पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है, तो अर्थ बदल जाता है।
1: अर्थ बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पकड़ी है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं, ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मूल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है, और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा जाओ जाओ, पर अब नहीं करते सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था बहुत सारा, तरह तरह के डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रही, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी जहां पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहां पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना, तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
0: तो 100 रुपए में मिल जाएगा। आज तो हम सब की हम आप भी खिचड़ी पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारी कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा, तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
1: जी। जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है पहले पढ़ाई भी कर लो
1: जी।
2: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस गया था। बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन
1: दिया। पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी।
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया, और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
2: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ।
2: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
2: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
3: हाँ।
2: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
3: हाँ, हाँ।
2: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
3: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
2: जी।
3: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
2: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
3: हूँ। क्या बात है, क्या बात।
2: आई नेवर इमेजिनड एनी अदर प्रोफेशन।
3: वाह वाह वाह।
2: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो हाँ। नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था।
3: हाँ।
2: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है।
3: हाँ।
2: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है
3: जी।
2: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया
3: जी।
2: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
3: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है
2: बहुत ज्यादा।
3: ये कितने दिनों तक चला?
2: ये सर बहुत चला। ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया
3: जी, जी।
2: मैं पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो।
3: अच्छा।
2: तो मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे।
3: हाँ।
2: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया।
3: अच्छा।
2: या फिर बस करना है इसलिए किया, सरवाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
3: जी, जी।
2: कि यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है। तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
3: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
2: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूँ उस नजरिए से अगर बात करें
3: हाँ।
2: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ ना देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है
3: हाँ।
2: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
3: वाह
2: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: ये एक बहुत खूबसूरत सा गाना है,
3: आइए सुनते हैं। जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर मैं जब नागपुर में था दो साल के लिए, मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में दो साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, एक तारीख को सैलरी आती है, वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत, क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहां पे एक बिजनेस हमारा था एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे से, तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा,
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माय लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ
0: जी।
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था। तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और अच्छा। मैं थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं
0: जी जी,
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा,
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा,
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
0: जी,
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के, पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे
0: जी,
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं
0: जी जी,
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग जैसे आवापुर में अभी बात कर रहे हैं,
0: तो सहज और स्वाभाविक,
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय
1: जिसको कहते हैं, तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसे लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही, तो दैट वाज माय स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है
0: जी जी,
1: मी मराठी है, बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो
0: जी,
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है। अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है
0: जी।
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं, बट आई वुड लव टू एक्सपांड माय थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूं रेगुलर।
0: दैट इज थिंग। चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ
0: जी,
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है,
1: जी
0: है ना
1: जी।
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी,
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी,
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए।
1: हाँ।
0: तो वो भी वाकया जो है, पहली फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जमाने में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर डिपेंड है। तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3-3 महीने मेरे पास काम नहीं था। तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो अब 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो। वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ।
0: अच्छा।
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं। तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: पड़ रहा है, क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं वेरिएशन ना दे पाऊं तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए। तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ।
0: अच्छा।
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है।
0: जी, अनाज का
1: कोठार। अनाज का कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो 20-20, 25-25 फीट के कोठार होते हैं, जो पहले किले पे भी हुआ करते थे।
0: हाँ।
1: जहां पे लोग आके उस पे धान्य डालते थे, कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया।
0: हाँ।
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी।
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी
0: जी,
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा।
0: अच्छा।
1: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था। एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था।
0: जी, जी।
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते हो।
0: हाँ, बड़े सेलुलॉइड पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सबके साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर। तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ।
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात।

0: आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
0: हाँ,
1: अगर
0: हाँ,
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है
0: जी,
1: तो सामने, मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
0: जी जी
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
0: हाँ हाँ
1: हमारा शो और उनका शो KBC और वो, हम
0: जी जी
1: तो उन्हें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे
0: हाँ
1: बात करने का,
0: हाँ
1: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा। मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
0: जी
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
0: अच्छा।
1: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट बात करनी है।
0: हाँ
1: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से, वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
0: हाँ हाँ
1: अरे क्या हो गया?
0: अच्छा।
1: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए,
0: हाँ
1: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाफ द सेम वे द वे यू लाफ।
0: अच्छा।
1: डर वाला मुझसे होता नहीं है।
0: हाँ। यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
1: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में,
0: हाँ
1: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे।
0: ओहो
1: आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा,
0: क्या बात, चलिए सुनते हैं।
2: हम

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार। और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो। मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी,
0: हाँ
1: रितेश देशमुख
0: हाँ
1: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
0: जी
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी वो। दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड, ग्रे शेड। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब,
0: जी
1: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का कैरेक्टर किया।
0: हाँ
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
0: जी
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
0: हाँ

0: हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई बातें हुई, मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जू चलो,
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ, मिलते हैं बाद में। बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा
0: अरे मैंने प्रश्न, मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया।
1: हाँ
0: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए।
1: अच्छा
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
1: हाँ
0: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था।
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: हाँ
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
1: बराबर
0: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
1: हाँ
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
1: जी
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है
1: हाँ
0: आगे,
1: उसकी एक
0: और
1: तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही
0: होना
1: है।
0: ही है।
1: जी
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख है तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम

0: दो और हमारे आइकॉन थे, भारती मौसी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे जी, वो अगले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
1: बिल्कुल,
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
1: अच्छा,
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में, मुझे
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
0: जी जी 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ,
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
1: हाँ,
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
1: हाँ,
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले।
1: बिल्कुल।
0: तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी,
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल।
0: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो, जाना पड़ता था जहां जहां बुलाया जा रहा है, वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, बोला नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या, नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था।
1: हाँ,
0: वो सफर है।
1: अच्छा,
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ,
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब।
1: बराबर।
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ,
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उनपे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला।
1: क्या बात है।
0: और फिक्र को धुएं में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत।
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे। हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे। अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी,
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये करेंगे।
0: हाँ।
1: जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी जी जी,
1: क्योंकि
0: आपने बड़े भाई का रोल,
1: मैंने उनके बड़े भाई का रोल किया था,
0: मनोज वागले
1: मेरा नाम था
0: जी जी जी।
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था।
0: हाँ।
1: मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए।
0: हाँ।
1: कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। हाँ। सभी हम लोग सभी से सीनियर है, और फिर उसके बाद में जैसे एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ years का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: फास्टर फेने वो शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल।
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रियल मदर फादर थे और उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: हाँ, आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने,
1: अमेजिंग इट वाज।
0: हाँ।
1: मतलब पहला शॉट सुमित दादा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित दादा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ।
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा।
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है।
0: अच्छा।
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है।
0: ओके।
1: मेरा जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले, जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ, हाँ।
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है, इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुमित दादा को भी मैं पहली बार मिला था, तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है तो
0: बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं।
1: जी जी जी।
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं। इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं कुछ।
0: जी, जी, जी।
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित दा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता, लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से, और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर
0: जी,
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
0: अच्छा।
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया है कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे।
0: अच्छा।
1: कि यार रुपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
0: जी,
1: वो ज्यादा मैटर करती है।
0: बिल्कुल।
1: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है या मराठी में आवंडा गेड़ा सुनता अपन,
0: एक घूंट लेने की घूंट प्रक्रिया
1: वो है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा था,
0: प्रयास करना
1: पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए।
0: हाँ।
1: लेवल तक पहुंचने की बात ही नहीं करता, सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली
0: जी,
1: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं।
0: हाँ।
1: मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है,
0: हाँ।
1: इतने इमोशन सोच के लिखी है। मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
0: जी,
1: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा।
0: हाँ।
1: तो आई यूज्ड टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था खुद, मैं लिखता हूँ जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज्ड टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार
0: जी जी,
1: उसी से फायदा होता है। आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
0: जी,
1: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
0: जी।
1: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
0: जी जी,
1: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
0: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
1: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ।
0: हाँ।
1: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
0: अच्छा।
1: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है। तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहां से आएगा। नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
0: अच्छा।
1: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
0: अच्छा।
1: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
0: अच्छा।
1: दिखता है बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा
0: अच्छा।
1: किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया।
0: हाँ, हाँ।
1: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। धन्यवाद।
0: जी जी।
1: मैंने बोला, सर काम अच्छा करता है क्या?
0: हाँ।
1: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
0: अच्छा
1: अच्छा। चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। I like that thing. फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है। ब्रदर ने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
0: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
1: जी,
0: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
1: ट्रू ट्रू।
0: जी जी जी। तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
0: हाँ।
1: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात।
0: और क्या चाहिए?
1: और क्या चाहिए?
0: क्या बात है।
1: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा। मेरे जितने भी रिश्तेदार है उनको भी अच्छा लगा।
0: हाँ।
1: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
0: क्या बात।
1: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए, कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी रामजी लंदन वाले।
0: अच्छा। हाँ।
1: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
0: अच्छा।
1: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं।
0: अच्छा।
1: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
0: ओहो।
1: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है।
0: हाँ।
1: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं, अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है।
0: हाँ।
1: गाड़ी देंगे आपके पास में। बोला क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं।
0: हाँ।
1: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं वो सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ। तो मजा तो वही है।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे।
0: क्या बात है।
1: That is more important.
0: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा।
0: हो, आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम है आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या...
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिप में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में नमस्कार मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत नमस्कार श्रोताओं आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने लिखते हैं
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए
0: बहुत सुंदर विचार आप सबको धन्यवाद आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने अर्चना ताई गोंडाने हीरामन शेंडे प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में
2: श्रोताओं पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
0: जी
2: तो अजीत जी क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं श्रोताओं हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियां तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से
2: जी जी जी तो श्रोताओं आपको बता दें पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं
0: जी विमलेश जी प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी
0: विमलेश जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए
2: जी जी जी सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
0: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी सचमुच तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं
0: अरे वाह वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी
0: लेकिन विमलेश जी ये होता क्या है
2: अजीत जी कोई इंटरनेट नहीं है लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है
2: बिल्कुल
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं
2: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की अजीत जी आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए
0: जी विमलेश जी ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा देखिए पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं
2: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है
2: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं
2: तो श्रोताओं पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों आपस में जुड़ी हुई जड़ों कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
2: जी।
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
2: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े

0: इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीत में प्रस्तुति।

0: सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है.
2: हाँ बेटा.
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे.
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे. अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते.
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं. याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना,

0: तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
1: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
0: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
1: हो सकता है कि...
2: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
1: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
2: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
1: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
1: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
3: आओ चलो।

0: तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो, औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं।

0: कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
1: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
0: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाए।
1: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
0: हाँ बिल्कुल वैसी।
2: कमाल है
0: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
2: वाह।
0: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
1: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
0: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है।
2: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
1: इतनी जल्दी?
2: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
1: हाँ, जाना है।
0: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें मम्मी कहते हैं। मम्मी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हा?

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकाबिल, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है।

0: अच्छा कादर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात।
3: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई बार किशोरी बालिकाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट दर्द और ऐंठन, कमर व पैरों में दर्द, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव, अधिक या कम रक्तस्राव होना, नींद की समस्या, स्वच्छता की कमी और संक्रमण का खतरा, स्कूल और दैनिक कार्यों में असुविधा। घबराएं नहीं, थोड़ी सी सावधानी से इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड का उपयोग करें और 4 से 6 घंटे में इन्हें बदल लें। शारीरिक सफाई पर विशेष ध्यान दें, खूब पानी पिएं, हरी सब्जियां, दालें और आयरन युक्त आहार लें। हल्का व्यायाम और योग भी बहुत जरूरी है। इसके पश्चात भी यदि कोई समस्या या अधिक रक्तस्राव होता है तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें।
1: जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शहडोल द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
3: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
2: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से

0: अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जयमाला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
8: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर

0: टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता
5: रहे हैं। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
6: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
1: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्य योजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

0: जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहां 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे, जहां हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक ये फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में आरटीई के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचे हर बार अभियान के तहत ग्राम काला पीपल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है। और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
3: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
4: मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई बार किशोरी बालिकाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट दर्द और ऐंठन, कमर व पैरों में दर्द, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव, अधिक या कम रक्तस्राव होना, नींद की समस्या, स्वच्छता की कमी और संक्रमण का खतरा, स्कूल और दैनिक कार्यों में असुविधा। घबराएं नहीं, थोड़ी सी सावधानी से इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड का उपयोग करें और 4 से 6 घंटे में इन्हें बदल लें। शारीरिक सफाई पर विशेष ध्यान दें, खूब पानी पिए, हरी सब्जियां, दालें और आयरन युक्त आहार लें। हल्का व्यायाम और योग भी बहुत जरूरी है। इसके पश्चात भी यदि कोई समस्या या अधिक रक्तस्राव होता है तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें।
5: जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शहडोल द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
7: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
8: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल,

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली, विविध

0: शाम के 7:30 हुए हैं। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। हमारे जो प्रदेश में मानसून आए हुए भी लगभग एक सप्ताह हो चुका है, और अब खरीफ की जो तैयारी के लिए जो है उपयुक्त समय है, जैसे कि मिट्टी के विषय में हमने बताया भी था, और अभी जो अभियान चल रहा था इसी के लिए ही आयोजित किया गया था कि जो खरीफ की जो बुआई है उसमें जो भी जानकारी आपको दी जा सके, जो उचित तरीके से जिसका प्रबंधन कर सके, तो इसी दिशा में जो है हम आगे बढ़ते हैं। और खरीफ में जो सबसे हमारी प्रमुख फसल है धान, उसकी जो प्रमुख विधियां हैं बुआई की, जिससे जो है हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, तो आज जो है हमारे बीच विशेषज्ञ आ चुके हैं स्टूडियो में, और आज वो बताएंगे धान की बुआई का जो तरीका है, विधि है, उसका नाम है सीधी धान की बुआई। इस विधि के बारे में वो जानकारी देंगे हमें, और उसे संक्षेप में DSR विधि भी कहा जाता है। तो हमारे बीच है कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से आए हुए विशेषज्ञ डॉक्टर BK प्रजापति जी। आइए जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब नमस्कार आपका।
1: किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने पूछा कि सीधी धान की बुआई, जिसे शॉर्ट में DSR विधि बोला जाता है, वह क्या है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे अभी रोपाई विधि में क्या होता है, किसान भाई जो है धान के लिए पहले नर्सरी तैयार करते हैं, रोपा तैयार करते हैं, 20-21 दिन तक उसका इंतजार करते हैं, उसके बाद खेत में जो है मचान, जिसको मचान करते हैं मतलब कीचड़ मचाते हैं, जिससे खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाए, दब जाए उसी के बीच, उसके बाद जो है रोपा लगाते हैं। परंतु ये सीधी धान की बुआई में जो है यह आपको बिल्कुल नर्सरी तैयार नहीं करना पड़ेगा, ना आपको खेत की मचाई करनी पड़ेगी, और सीधा जो है आपको, जैसे आप गेहूं चना जो है सीड ड्रिल मशीन में बुआई करते हैं, मतलब जिस प्रकार से आप अन्य फसलें जो है सूखी बुआई करते हैं, वैसे ही आपको करना है। तो इस विधि को जो है हम लोग इसीलिए सीधी धान की बुआई कहते हैं। जैसे हमारे शहडोल ने पहले प्राचीन समय से बुआर विधि जो बहुत प्रचलित है, जिसको खेत जुताई के बाद हम लोग छींट देते थे धान का बीज, और उसके बाद जैसे बारिश होती तो अंकुरण हो जाता था, यह जो है उसी से एक आगे नवीन तकनीकी है, नवाचार है, जिसके अंतर्गत हम लाइन से जो है धान की बुआई करते हैं, इसी को है जो है हम सीधी धान की बुआई कहते हैं।
0: बिल्कुल। और ये जो DSR जो इसको संक्षेप में कहा जाता है, वो
1: इसको इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट सीडेड राइस, या सीधी धान की बुआई का ही शॉर्ट में बोला, इसको DSR बोला जाता है, इसका पूरा नाम है डायरेक्ट सीडेड राइस।
0: जी जी जी। ऐसा माना जाता है, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जो श्री विधि जो होती है जिसमें रोपा लगाया जाता है वो ज्यादा बेहतर होती है, आप जो है इस विधि के पक्षधर क्यों हैं?
1: किसान भाइयों, जैसा इसके लाभ मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि श्री विधि जो है ज्यादा लाभप्रद है
0: जी,
1: परंतु आप देखेंगे कि किसान भाई जब भी रोपा लगाना होता तो एक तो मजदूर की कमी हो जाती है रोपाई के समय पर
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: किसान भाई जो है 20 या 21 दिन की थरा, जिसको नर्सरी का रोपा बोला जाता है, वो 20-21 दिन में न लगाकर वो कई बार 30-35 दिनों के जो है नर्सरी के पौधे को रोपा को लगाते हैं, जिससे एक तो कल्ले कम बनते हैं, उत्पादन कम प्राप्त होता है। अगर हम मजदूरों की बात करें तो एक एकड़ मजदूर को रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम जो है 10 मजदूर लगते हैं। ये 10 मजदूर तब लगते हैं जब किसान खुद के घर का रोपाई करना होता है, तब लगभग जो है उसको खर्च जो आता है 3,000 के आसपास आता है। अगर एक मजदूर की अगर रोजी मान ले प्रतिदिन 250 रुपए, तो 2,500 रुपए, या 300 मानते तो 3,000 रुपए। अगर मजदूर जो है दूसरे के यहाँ रोपाई करने जाता है तो एक एकड़ में जो है लगभग जो है 15-16 मजदूर लगते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे लागत जो है आपकी 3,500 से जो है 4,500 रुपए जो है केवल रोपाई में आपको लग जाता है। तो श्री विधि में ये आपको एक मजदूर की जरूरत नहीं पड़ रही है, और आपकी यहाँ पर जो है लागत जो है आपकी 4,000 से 5,000 रुपए ये बच रही है। हाँ। उसके अलावा मैं बताऊं आपको, जैसे नर्सरी 20-21 दिन आपको तैयार करना पड़ता है पहले, तो आपको दो बार जो है एक हेक्टेयर, या हम एक एकड़ के लिए बात करें तो 300 से 400 वर्ग मीटर का रकबा जो है जरूरत पड़ती है धान की नर्सरी की तैयार करने के लिए। उसके बाद उसमें आप कल्टीवेटर चलाएंगे, मजदूरों से मेड़ बनवाएंगे, उसकी सिंचाई करेंगे, तो कुछ नहीं, तो इसमें भी आपको 1,000 से 1,500-2,000 रुपए का आपकी लागत आ जाती है। परंतु श्री विधि में आपको या कोई भी तकनीकी आपको मत नहीं अपनाना है, मतलब नर्सरी ही नहीं तैयार करनी है आपको, तो आपकी यह भी लागत बनी। तो आप देखेंगे कि 4500 में अगर आप इसको 2000 जोड़ लेते हैं तो लगभग आपका जो 6500 रुपए यहाँ पर आपको बच गया है। इसके बाद जो है आपकी फसल जो है 20 से 25 दिन पूर्ण पककर तैयार हो जा रही, दो हफ्ते पहले तैयार हो जा रही। जब अक्टूबर का महीना होता है तो वहां आपकी फसल जो है दो हफ्ते पहले तैयार होगी। उससे फायदा क्या होगी कि जो ठंडी की जो फसलें हमें बुआई करनी है, चाहे गेहूं है, चना, बिल्कुल गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, तो आपको खेत तैयारी आप आसानी से कर लेंगे, आपको समय मिलेगा। उसके बाद जब गेहूं की बुआई करते तो आपकी जो मार्च में जो है, कई बार अभी 2-3 वर्षों से शहडोल जिले में देखा जा रहा है कि गेहूं की बुआई लेट होने के कारण हमारे किसान दिसंबर तक बुआई करते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि मार्च के महीने में जो है अचानक तापमान में वृद्धि हो जा रही है 10 से 12-15 मार्च तक, तो उस समय क्या होता है गेहूं में दाने भरने की व्यवस्था होती है। तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है दाने पूर्ण रूप से भर नहीं पाते हैं, उसके कारण क्या होता है दाने जो है बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और वह जब मंडी में बेचने ले जाते हैं तो उनका वजन कम निकलता है, तो इससे किसान को नुकसान होता है। यह इसको बोला जाता है गेहूं में हीट स्ट्रेस, मतलब तनाव, गर्मी का तनाव हो जाता है। अगर किसान इसी को 20 से 25 दिन पहले सीधी धान की बुआई की बात करते तो वह जो है हीट स्ट्रेस का समय होता जो होता है वो गेहूं के लिए बच जाता है और गेहूं हमारी स्वस्थ और अच्छे दाने बनेंगे हमें, तो यह हमें लाभ प्राप्त होता है। उसके अलावा कई बार हमारे शहडोल जिले में जैसा मैं आपको बताऊं 1,45,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है धान की बुआई होती है, लेकिन ठंडी में यही रकबा हमारा कम हो जाता है। तो किसान भाई जो उतेरा की फसल लगाना चाहते हैं, तो उतेरा की फसल के अंतर्गत जैसे हमारे अलसी बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे जिले में, देसी मटरी होती है, तो जब आपकी धान की फसल पकने वाली होती 15 दिन पूर्ण जो है आप इन फसलों को खेत में डाल देते तो भूमि में जो संरक्षित नमी होती वह पौधे को मिल जाएगा, तो हमें इसी अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी और अतिरिक्त जो है हमें खाने के लिए अनाज भी उपलब्ध हो पाएगा। दूसरी जो है मीथेन की समस्या जो है, जब पानी भरा होता है तो मीथेन गैस निकलती है, लेकिन सीधी धान की बुआई में ये किसी भी चीजों की आपको पानी भरा ही नहीं रहेगा तो जो है आपको मीथेन की समस्या नहीं होगी। जब हम लोग खेत में मचान करते हैं तो रोटावेटर चलाते हैं, तो रोटावेटर का एक घंटे की लागत जो होती है 1,000 रुपए प्रति घंटा चल रहा है। अगर आप एक एकड़ में 2 बार रोटावेटर चलवाते हैं धान की रुपाई के लिए तो आपकी 2,000 रुपए लागत यहाँ भी लग जाती है। तो आप देखेंगे 65,000 में अगर आप 2,000 और जोड़ लें तो लगभग जो है 8,500 रुपए जो है आपकी लागत यहाँ पर भी लग रही। आप ओवरऑल देखेंगे एक हेक्टेयर भूमि में लगभग या एक एकड़ में आप बात कर ले तो आपका 8 से 10,000 रुपए आप अपनी लागत को यहाँ बचा सकते हैं। और जो जैसा मैं आपको बोला रोटावेटर चला के मचाई करते तो उससे जो मिट्टी की संरचना होती है वह टूट जाती है जो सैंड सिल्ट क्ले में, तो अगर आप सीधी धान की बुआई करते तो यह संरचना भी आपकी टूटेगी नहीं। उसके अलावा जो है 15 से 20% जो है आपका जल का संरक्षण हो जाता है, क्योंकि आप जब रोटावेटर चलाते हैं मचाई करने के लिए उसमें पानी लगता है, लेकिन वह चीज जो है सीधी धान की बुआई में करना ही नहीं पड़ता, तो आपका जो पानी की बचत है लगभग 15 से 20% भी बच जाती है। आपको फ्यूल जो होता है ट्रैक्टर चलाएंगे तो डीजल की लागत जो होती है वो भी आपकी बच जाएगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हमें 8 से 10,000 रुपए का जो है प्रति एकड़ बोल सकते हैं तो हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है।
0: जी बिल्कुल, ये जो सीधी धान की बुआई जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, तो अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि इसके लाभ क्या हैं, क्यों करें, तो आपने जो बताया है इसी में ही ये समाहित है। जैसे पहला तो आपने बताया कि लागत कम हो जाती है, खेत भी जो है तैयार रहेगा आगे आने वाली जो रबी

0: जी, तो अब हमारे किसान भाई ये भी जान चुके हैं कि इसकी जो विधि है वो, और साथ ही जो है क्यों करें, लाभ क्या है, ये जान चुके हैं।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहा है तेरे बीजू का,
2: तो चला बोल रहे।
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी था ना। और लो, वो पहली वाली बात कहाँ,
2: परंतु सभी डालें।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चाखा और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: आप जानते हैं कि इसको सीधी धान की जो बुआई है उसको करने के तरीकों के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इसको करते हैं।
4: किसान भाइयों, इसमें सर्वप्रथम तो जरूरी है कि किस्मों का चयन करना।
0: जी,
4: तो मैं आपको बता दूं, हम किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होता है कि उनके खेत की मिट्टी किस प्रकार की, मतलब हल्की मिट्टी है या भारी मिट्टी है, या किसान के पास पानी की उपलब्धता कितनी है। अगर किसान भाई जो है 110 से 120 दिन की अगर किस्म लगाना चाहते हैं, तो हमारे शासकीय संस्थान बीज निगम है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, और हमारे कृषि विभाग के माध्यम से भी जो है अभी सभी सोसाइटीज में जो है बीज पहुंचने वाले हैं, पहुंच भी गए हैं। तो उसमें जैसे किसान को मैं बता दूं, जैसे JR 81 एक किस्म है, JR 206 है, यह 115 से 120 दिन की किस्में हैं। इसमें उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर 40 से 50 के बीच हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है जैसे MTU 10-10 जो किसानों के बीच बहुत प्रचलित किस्म है, उन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। MTU 1156 है, MTU जो है 10-64 है। तो यह मुख्य रूप से जो किस्में हैं, IR 64 DRT 1 जो है एक मुख्य रूप से फसल धान की किस्म है।
0: जी,
4: यह 115 से 120 दिन की किस्म है। किसान भाई अगर इसको चयन करते हैं तो फसल 115 दिन में तैयार हो जाएगी, 120 दिन में तैयार हो जाएगी, उत्पादन भी 45 से 50 क्विंटल प्राप्त होगा। हर किसान भाइयों के पास अगर मान लीजिए सेंटेड धान लगाना चाहते हैं, हमारे जिले में कई किसान जो है बहुत इच्छुक होते हैं इनके लिए, तो उसमें उनकी जैसे Pusa Basmati 1 है, Pusa Basmati 1121 है, Pusa Basmati 1692 है, Pusa Basmati 1885, Pusa Basmati 1886, तो ये किस्में जो 140 से 145 दिन की होती है, और यह भारी भूमि में लगाना होता है। तो ये जो है भारी भूमि की किस्में हो गई। अब जैसे किसान को मान लीजिए 125 से 130 दिन की लगानी, तो CR 310 और IR 64 DRT 1 इस किस्म का चयन वह कर सकते हैं। अब जो है किसानों को खेत की तैयारी, जैसा मैं आपको बता दूं, जैसे आप अन्य फसलों के लिए चाहे गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी के लिए आप खेत की तैयारी करते, उसी प्रकार से जो है इस सीधी धान की बुआई के लिए 2 बार कल्टीवेटर चलाकर जो है खेत को पूरी तरीके से जो है आप जुताई कर लें, रोटावेटर चलाकर या आप एक पाटा पीछे लगाकर जो उसके ढेले होते हैं उसको फोड़ लें। उसके बाद इन जो किस्मों को मैं आपको बताया हूं, आप उनका चयन कर लें। चयन करने के बाद जो है आप बुआई के लिए है 2 मशीनें हमारे यहाँ जिले में उपलब्ध हैं। एक है मल्टी क्रॉप प्लांटर, मतलब इस मशीन के द्वारा कई फसलों की बुआई जो है आप कर सकते हैं। और दूसरी जो है सीड ड्रिल मशीन, जो बहुत ही पॉपुलर हर किसान के पास उपलब्ध है, जिले में लगभग हर गांव में उपलब्ध है। तो इन मशीनों का आप किसान चयन कर सकते हैं अपने। उसके बाद आप जो है बीज का जो है आप बीज उपचार करिए। बीज उपचार करने के लिए जैसे आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए आपके पास दीमक की अगर समस्या है, तो उसके लिए जो है आप क्लोरपायरेफोस 2.5 ml मतलब मिलीलीटर आप दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर दीमक की समस्या नहीं है, तो आप सीधा जो है आप कवकनाशी जो है कार्वेंडा जी मैंकोजेब जो है, या आप बिटावेक्स जो है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसको उपचारित करने के उपरांत जो है आप जो है सीड ड्रिल मशीन में जो है आप पीछे के खांचे आप देखे होंगे, तो वहां पे बीज आपको डालना है, आगे की ओर जो है खाद डालना होता है, और उसको नीचे की ओर आप सेट कर लीजिए, पूरी नाली खोल दीजिए। क्योंकि आप जब पूरे सिद्धिल मशीन की नाली को आप खोल देंगे, तो 22.5 सेंटीमीटर का जो है दूरी बन जाएगी आपकी, जो किसान अक्सर धान की बुआई जो है 20 या 25 सेंटीमीटर दूरी पर करते, तो वह दूरी भी जो है इसके माध्यम से जो है सही हो जाएगी। उसके बाद जो है सीधी धान की बुआई में सबसे मुख्य समस्या जो आती है आपकी, खरपतवार और अंकुरण की। तो हमारे यहाँ 2 तरीके धान की इस सीधी बुआई के तरीके में, एक तो भूमि को जो है तैयार करने के पूर्व जो है आप जो है पलेवा कर दें, जिसको तर बतर विधि बोला जाता है, परंतु जो है अब तो बारिश हो चुकी है, तो किसानों को जो है तर बतर करने की आवश्यकता नहीं है।

0: जी
1: दूसरा विधि होता है बुआई के बाद जो है स्प्रिंकलर के माध्यम से जो है सिंचाई करना, परंतु इस समय हमारे यहाँ ऐसी कोई अवस्था नहीं, बारिश हो चुकी, सभी के यहाँ खेत में नमी अच्छी है। किसान भाई इसको ट्रैक्टर में सीड ड्रिल मशीन को फंसा कर जो है एक एकड़ के लिए बोला जाता है कि 10 से 12 किलो बीज जो है सीधी धान की बुआई के लिए उपयुक्त होता है, परंतु जो है हमारे जिले की मिट्टी चूंकि हल्की है, अगर हम 10 से 12 किलोग्राम बीज अगर लेते हैं तो उसमें कल्ले नहीं बन पाएंगे। तो किसान भाई 25 से 30 किलो जो है प्रति एकड़ जो है आप इस बीज का उपयोग करिए जो चयनित किस्मों का, उसके बाद जो है आप सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बुआई कर लीजिए। बुआई के तुरंत 3 दिनों के अंदर में, जैसे ही आप बुआई करते हैं 3 दिन के अंदर में जो है कोई भी एक खरपतवार नाशी
0: जी
1: प्री इमरजेंसी जिसको बोला जाता है पेंडामेथिलीन नामक दवा का आपको छिड़काव करना होता है। पेंडामेथिलीन जो है इसका उत्पाद जो है एक एकड़ के लिए 1 लीटर का आता है, तो आप उसको सबसे आसान तरीका है कि आप 10 लोटा पानी में या 10 गिलास पानी में मिला लीजिए और एक एक लोटा या एक एक ग्लास जो एक एक टंकी में डालकर जो है आपको दवा का छिड़काव जो है आपको करना होता है। अच्छा, इस दवा का छिड़काव करते हुए पीछे की ओर चलना होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि यह दवा जो है भूमि पर परत बनाती है, अगर आप आगे की ओर चलेंगे तो परत टूटेगी तो वहां पे जो है खरपतवार उगने की संभावना बढ़ जाती है। और खरपतवार जो है आप देखेंगे सीधी धान की बुआई में कई तरीके के सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती, सेजे, जैसे मुख्य रूप से मोथा हुआ, दूब घास हुई, सावा हुआ, ये बहुत अधिकतर देखने को आपको मिलेगा। किसानों को हमेशा सलाह दी जाती है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, परंतु अगर आप किसान नहीं कर पाए हैं तो इस दवा का निश्चित रूप से छिड़काव करें। इसके अलावा भी जो है पायरेजो सल्फुरान नामक दवा आती है, आप उन दवाओं का उपयोग भी आप कर सकते हैं। यह खरपतवार जो है पौधे के साथ अगर आप नहीं इसका दवा का छिड़काव करेंगे तो ये पौधे के साथ उग जाएंगे हमारे धान के साथ, और यह जो है पोषक तत्व के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए जो है पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और जो है पौधे की बढ़वार को रोक देंगे। अब जो है जैसे ही आपकी 15 से 20 दिन का अगर धान हो, जैसे ही होता है, मतलब अगर खेत में जो है आपको 2 से 3 पत्ती दिखाई देती है तो उसके बाद पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी। अच्छा। जैसे मैं आपको एक बता दूं, जैसे बिस्पायरीवैक्स सोडियम बहुत ही प्रचलित जो है खरपतवार नाशी, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह सकरी, चौड़ी और सेजेस तीनों प्रकार के खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा पिनोक्सुलम भी है, इथॉक्सी सल्फुरान भी है, एजिम सल्फुरान भी है, तो कई तरीके के जो है बाजार में विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशी जो है उपलब्ध है, आप इनका चयन कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको पोषक तत्व का किस प्रकार से उपयोग करना है वो इसमें आपको बता दूं, क्योंकि किसान भाई डीएपी के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और कई बार किसानों के फोन आ रहे हैं सर डीएपी जो है हमें नहीं मिल पा रही, तो किसान भाई आप डीएपी की ओर मत भागिए। डीएपी के विकल्प के रूप में कई पोषक तत्व जो है हमारे यहाँ सोसाइटीज में, जिले में उपलब्ध है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसान भाई अगर उनको यूरिया सुपर पोटास मिल रहा है तो आप यूरिया सुपर पोटास को जो है आप उसका चयन कर लीजिए। यूरिया की जो है आपको 5 बोरी लगेगी, सिंगल सुपर फास्फेट की 7 बोरी लगेगी और पोटास की जो म्यूरेट ऑफ पोटास बोला जाता है उसकी जो है 70 से 75 किलो जो है आपको प्रति हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में जो है आपको इस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। सिंगल सुपर फास्फेट जो है इसका सबसे बेनिफिट ये है कि फास्फोरस के साथ जो है सल्फर और कैल्शियम अतिरिक्त पोषक तत्व जो है हमें फ्री में मिल जाता है, जो पौधों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होता है।
0: अच्छा।
1: अगर जो किसान यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास नहीं डाल रहे हैं, अगर उनको 12-32-16 मिल रहा है मान लीजिए विकल्प के रूप में, तो कृषक भाई आप 12-32-16 को लीजिए। अच्छा। उसके लिए जो है आपको 3.5 बोरी जो है यूरिया और 3.5 बोरी जो है 12-32-16 का आप उपयोग कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको जो है 20-20-0 अगर मान लीजिए सोसाइटीज में, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको 4 बोरी यूरिया लेना है और जो है आपको 3 बोरी जो है 20-20-0-13 का लेना है और 3 अच्छा। बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट का लेना है। ये जो है कैलकुलेशन के बाद में ये आपको बता रहा हूँ बोरी की सीधी मात्रा, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि पोषक तत्व का उपयोग जो है हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए और मिट्टी की जांच के आधार पर जो है मुख्य रूप से अनाजी फसलें जैसे धान है तो इसमें 120-60 केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को बोला जाता है। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो है गणना के बाद मैं आपको इन विकल्पों को आपको बताया, जिससे किसान भाई जो है अधिक परेशान न हो। तो आप इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अब किसानों के लिए मैं बता दूं कि फास्फोरस और पोटास का उपयोग जो है पूरी मात्रा जो आपको फास्फोरस और पोटास की है बुआई के तुरंत बाद आपको, मतलब बुआई के साथ साथ आपको इसको डालना है
0: जी।
1: नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में जो है तो उसमें जो है आधा जो है यूरिया जो है उसको पहले बुआई के बाद, मतलब पहली बुआई में साथ में करना है, उसके बाद जो है बची हुई 50% जो है आधी यूरिया उसको जो है 30 दिन के बाद, फिर 60 दिनों के बाद जो है अगर आप डालते हैं तो यूरिया, कई बार बारिश होती तो यूरिया बह भी जाती है, तो अगर आप तोड़ कर डालते हैं तो पौधे को

0: सकता अनुसार मिलेगा भी और मिल भी जाएगा और आपकी यूरिया बहकर भी दूसरे के खेतों में नहीं जाएगी। सीधी बुवाई में जो है दूसरी एक समस्या आती है जिंक की। कई बार हमारे शहडोल की मिट्टी में जो जिंक की कमी है, तो आप देखेंगे जिंक की कमी को पहचान के लिए धान के पत्तों पे जो है कत्थे कत्थे धब्बे बन जाते हैं, जैसे कोई पान खा के थूक देता उस प्रकार के। तो उसके निराकरण के लिए जो है आप बुआई के समय जो है आप जिंक सल्फेट जो है 10 किलो प्रति एकड़, अगर 21% का जिंक सल्फेट है तो आप उपयोग कर लीजिए उसका, या जिंक सल्फेट 33% का है तो आप उसकी 6 किलो मात्रा प्रति एकड़ उपयोग कर लीजिए, या EDTA है तो EDTA की मात्रा 2-3 किलो प्रति एकड़ आपको उपयोग करना होता है बुआई से जस्ट 10 दिनों के बाद। कभी भी जिंक और फास्फोरस को एक साथ मिक्स करके नहीं बुआई किया जाता, क्योंकि फास्फोरस और जिंक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अच्छा। अगर फास्फोरस मिल जाएगा पौधे को, अगर ज्यादा रहेगा तो जिंक पौधे को नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए जिंक का उपयोग 10 दिनों के बाद जो है आप खेत में निश्चित रूप से आप कर लिए। अगर आप इसका उपयोग नहीं किए हैं तो जिंक सल्फेट जो है उसी 50 ग्राम मात्रा को जो है एक टंकी में घोलकर जो है आप छिड़काव कर लीजिए। दूसरी जो है एक समस्या आती है लोहे की। अच्छा। पौधे में आयरन की कमी देखने को मिल जाती है, उसकी पहचान होती पत्ती के जो धान का पत्ता ऊपर जो है दोनों कोने जो है सफेद होते हुए नीचे की ओर आते हैं
1: जी।
0: तो इसके लिए भी कुछ नहीं, आपको फेरस सल्फेट जो है उसकी 50 ग्राम मात्रा जो है आप प्रति टंकी लेकर जो है आप अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह भी जो है निराकरण हो जाएगा
1: बिल्कुल।
0: अन्य जो जैविक के अंतर्गत जो है आप एजोला का निश्चित रूप से आप धान की फसल में उपयोग करिए, क्योंकि यह शैवाल है तो वायुमंडल नाइट्रोजन को जो है भूमि में स्थिरीकरण करेगा, पौधे को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होगा। इसके अलावा माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक तरीके का कवक होता है जो पौधों की जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। इसकी जो है 3-4 किलो मात्रा 30-40 किलो गोबर में मिलाकर जो है प्रति एकड़ अगर आप छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही जड़ों वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आकार संरचना बढ़ेगी, तो फास्फोरस की और जिंक की जो है उपलब्धता पौधे को ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, कैल्शियम बढ़ जाएगा। अगर सूखा मान लीजिए पड़ता है तो पौधे के लिए जो सूखा से लड़ने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी, क्लोरोफिल बढ़ जाएगा, कल्ले ज्यादा बनेंगे और निश्चित रूप से जो है उत्पादन में जो है आपकी वृद्धि हो जाएगी
1: जी।

0: आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
1: तीन पोषक तत्व के बारे में आपको बताया। किसान भाई जो है, अगर जैविक

0: के अंतर्गत है तो निश्चित रूप से जो है आपको 10 से 15 किलो क्विंटल जो है या टन में आप बात करें 10 से 15 टन जो है गोबर सड़ी हुई जो है प्रति हेक्टेयर जो है बुआई जैसे लास्ट जुताई होती तब आप कर लीजिए या 15 दिन पूर्ण आप मिश्रित कर लीजिए। लेकिन तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जो नीम की अगर खली मिल जाए तो निश्चित रूप से किसान भाई जो है आप 70 से 80 किलो नीम की खली प्रति एकड़ आपको उपयोग करना होता है। तो यह जो है आपको मैं तरीके बताए। इसके अलावा जैसे कीट बीमारियां हैं तो जैसे तना छेदक कीट है तो तना छेदक कीट के लिए जैसा आपको मैं नीम की खली का उपयोग बताया उसके अंतर्गत जो है रासायनिक कीट नाशक के नियंत्रण के लिए आपको मैं बता दूं दवाएं जैसे क्लोरपाइरेफॉस है, क्विनोलफॉस है, फ्लुवेंडावाइड है, कारटाफ है, क्लोर एंट्रानेलिपुल है, इन दवाओं का आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर माहू लगता है तो माहू के लिए जिसको ब्राउन प्लांट ऊपर बोला जाता है इसमें जो है धान का जो खेत है वो गोल गोल पैचेस में पैरा बन जाता है मतलब सूख जाता है आसान किसानी भाषा में हम आपको बताएं तो इसमें आप इमिडाक्लोपिड नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग न करें कम से कम कर दें उस अवस्था में। पाइमेट्रोजिन दवा का उपयोग करें, थायोमेथिक्साम नामक दवा का उपयोग करें तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो कट वर्म जो होता है या कैश वर्म जो है वह भी बहुत ज्यादा होता है तो जैसे मैं तना छेदक कीट के लिए जो दवाएं बताएं आप उन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और बीमारियों के अंतर्गत हमारे जिले मुख्य रूप से जो होता है ब्लास्ट सबसे बड़ी समस्या है जिसमें भूरे धब्बे बनते हैं और बीच का धब्बा जो है नाव के आकार में सफेद सफेद होता है। अच्छा। तो उसके लिए ट्राइसाइक्लाजोल या प्रोपिकोनाजोल नामक दवा का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ जो है लाही फूटने की। अच्छा। जो फाल्स स्मट बोला जाता है इसमें दाने जो है संतरे रंग के हो जाते हैं इस पे काले काले जो है उसके बाद जो है हो जाएंगे और अंडे जो है भूमि पर हवा के माध्यम से उड़ते रहते हैं। उसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका उपयोग कर सकते हैं, क्लोरथैनोलिन का उपयोग कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल नामक दवा का उपयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से कीट बीमारियां जो है किसान भाई आप अपने नजदीकी जो कृषि विस्तार अधिकारी आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी कृषि विज्ञान केंद्र में आकर जो है आप संपर्क कर सकते हैं और जो है किन कीट बीमारियों का जो है आप निराकरण कर सकते हैं। अगर आप इन सभी तकनीकों का अगर आप अपनाते हैं निश्चित रूप से जो है आपको प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ अगर आपको मैं बोलूं तो 18 से 22 क्विंटल तक आपको जो है धान में उत्पादन प्राप्त होगा सीधी धान की बुआई से। और इससे जो है पूर्ण में आपको विभिन्न लाभ बताए आप उससे भी जो है अवगत हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये बीच में जो है ये बात आई थी कि हल्की और भारी मृदा, तो हमारे जिले में जो है जैसे आपने बताया था कि हल्की मृदा ज्यादा है बहुतायत में है, तो उसके संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा। और उसके अलावा जो मशीन, जो एक दो मशीन आपने सीड ड्रिल और कुछ एक और मशीन बताया था, तो उसके विषय में और ज्यादा जानकारी कहाँ से हमारे किसान भाई प्राप्त?
0: किसान भाइयों जैसे हल्की मिट्टी का उद्देश्य मतलब रेतीली मिट्टी से है
1: जी जी,
0: जो बहुत जल्दी उसे पानी लगता नहीं है और पानी जो है उसमें जो है
1: निकल जाता है,
0: बिल्कुल इन्फिल्ट्रेट हो जाता है या जल्दी पानी सोख जाता है अगर किसानी भाषा में बताऊं आपको। भारी मिट्टी मतलब काली मिट्टी होती है जिसे पानी एक बार लग गया तो लंबे समय तक जो है मिट्टी में पानी जो है टिका हुआ रहता है। और जो आपकी मशीन की बात आप करें तो मशीन में मुख्य रूप से मल्टी क्रॉप प्लांटर मशीन जो है जो सब्सिडी के माध्यम से हमारे कृषि अभियंत्रिकी यंत्र जो नरसरहा में ऑफिस है वहां पर जो है उनके कार्यालय से में भी आपको यह मशीन मिल सकती। कई किसान जो है हमारे यहाँ जिले में जो है कस्टम हायरिंग के माध्यम से इसको ले भी चुके हैं, उनसे भी आप किराए पे ले सकते हैं। और सीड ड्रिल मशीन जो मैं आपको बताया आमतौर में हर किसान जो है सीड ड्रिल मशीन को जानता है, ये 40 से 45 एचपी की मशीन ट्रैक्टर से ये चलती है। उसमें नीचे जो है नालियां बनी होती है मतलब जुताई वाली, उसमें पाइप लगे हुए होते हैं, ऊपर ड्रम में दो खांचे होते हैं, पीछे की ओर जो होता है बीज डालते हैं, आगे की ओर खाद डालते हैं। तो इसमें जो है बीज जो है पहले खाद गिरेगा, खाद के ऊपर जो है बीज गिरता है। तो जब भी पौधे को जरूरत होती है तो उसको आसानी से जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो है पानी में घुलकर पौधे को उपलब्ध हो जाता है। सीधी धान की बुआई में यह सावधानी निश्चित रूप से रखनी होती कि उसकी गहराई 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो एक्चुअली।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो यह भी जो अगर हम सीड ड्रिल मशीन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी हमें गहराई भी मेंटेन हो जाती है और पोषक तत्व जो होते हैं यूरिया डीएपी पोटास या 12-32-16 जो भी विकल्प आपको बताया वह दाने के ऊपर बीज होता है। तो जब भी पानी में हमारे पोषक तत्व घुलते हैं तो आसानी से पौधे की जड़ें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं
1: जी, क्योंकि जो शीघ्र पकने वाली जो किस्म है जो लगभग 4 महीने के आसपास में हो जाती है तो वो उस समय तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम रबी के लिए भी जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके लाभ है। तो सीधी धान की बुआई के विषय में आपको किसान भाइयों को ये जानकारी देने के लिए और साथ ही स्टूडियो में आकर बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में जो है किसान भाइयों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान भाइयों, आपको भी धन्यवाद सर।
2: ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के यूट्यूब चैनल से भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करें AKASHVANISHAHDOL यानी आकाशवाणी शहडोल।

0: किसान भाइयों और बहनों, किसानवाणी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन देशों के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए कई फैसले भी लिए। इस विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अम्बेसडर तायल, हमने इंडियन ओशन रीजन की तरफ भारत सरकार का एक झुकाव देखा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये विजिट है, ये इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न मैरिटाइम जोन और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, आप भारत इंडोनेशिया की साझेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
3: देखिए, अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर किसी तरह से जुड़ चुके हैं और पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का कूटनीति का एक बहुत ही बड़ा पुश हमें देखने को मिल रहा है। पिछले अप्रैल में हम कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए थे। अभी एक हफ्ता पहले हमने देखा कि जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी और बहुत ही एक सक्सेसफुल वो विजिट रही। और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा पर निकले हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ये पांचों देश मुख्य लोकतांत्रिक देश हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा पहला पड़ाव भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा का इंडोनेशिया में आज रहा।
2: अम्बेसडर तायल, जैसे कि आपने बताया, जितने अग्रीमेंट साइन हुए, जितने नतीजे आए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भी सहयोग समझौते शामिल हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए समझा सकते हैं इसको और विस्तार में?
3: देखिए, करीब 12 से अधिक समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में, संस्कृति, कल्चर और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया। और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा जो सबांग पोर्ट है, एक जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है। क्योंकि ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि जो मलक्का स्ट्रेट्स है, बहुत ही मुख्य पानी का रास्ता है जिससे पूरे ईस्ट एशिया व्यापार वहां से होता है, भारत का 40% व्यापार वहां से होता है। और अभी पीछे जो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई वहां पे गतिरोध कभी भी आएगा व्यापार में और शिप्स को पार करने में, तो इस तरह मलक्का स्ट्रेट्स है, उसका ठीक वहां चले और उसमें कोई गतिरोध अवरोध ना आए, इसमें भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं समझता हूं कि इस पर भी कुछ एग्रीमेंट और कुछ बातचीत हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है।
2: एक और जो अहम फैसला आज लिया गया, जिस पर मेरे समझ से चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों और स्टील के क्षेत्रों में सप्लाई चेन को

0: मजबूत करने का भी समझौता हुआ है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट में साझेदारी का एक नया दौर वो भी सामने आएगा। अम्बेसडर थायल, खास तौर पर आपसे महत्वपूर्ण उपयोगी खनिजों और रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में बात करना चाहूंगी।
1: पिछले एक दो वर्ष में विश्व के सामने एक ये नया मुद्दा उठा है कि क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीन ने अपना एक वर्चस्व जमाया है, 80% से ज्यादा ये कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे श्रोता ये देखेंगे कि भारत के जो भी एग्रीमेंट्स आजकल दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं उसमें हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र रहता है, क्योंकि ये जो खनिज है ये बहुत रेयर है। ये नाम क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ्स इनको कहा जाता है। ये खनिज इंडोनेशिया में काफी मिलते हैं और एक देश इसको नहीं पूरी तरह से संभाल पाता, तो कई जगह ये देखा गया है कि कई देश मिलकर खनिज एक जगह होता है, उसको प्रोसेस दूसरा देश करता है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो भी समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में आज हुआ है उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भविष्य में सप्लाई चेन पर पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स का। 21% दुनिया की निकल इंडोनेशिया में है और स्टेनलेस स्टील की प्रोसेसिंग में निकल की आवश्यकता पड़ती है और भारत स्टील का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता भी है और प्रोड्यूस भी करता है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा समझौता हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडोनेशिया की एजेंसीज के बीच में हुआ है।
0: अम्बेसडर थायल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दुनिया भर में यूपीआई काफी विश्वसनीय और काफी उपयोगी साबित हो रहा है। आज ये घोषणा की गई है कि यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा। जब यूपीआई सरहदें पार कर रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव लाने और लीडर के तौर पर ये सब भारत की छवि को और कैसे बेहतर बना रहे हैं?
1: जिस तरह से भारत में डिजिटल सर्विसेज पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंची है, गांव-गांव में पहुंची है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, और जो पेमेंट्स कार्ड्स के थ्रू बैंक के द्वारा हो रहे हैं, फोन के द्वारा हो रहे हैं, तो इसमें जो यूपीआई 10 देशों से पहले ही भारत का समझौता हो चुका है जहां भारत के आप यूपीआई से पेमेंट रुपीस में कर सकते हैं, अब इंडोनेशिया का जो इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम है उसके साथ भी यूपीआई का इंटीग्रेशन होगा, उसका मेल होगा। हमारे जो पर्यटक हैं और बिजनेस के लोग हैं वो अगर इंडोनेशिया जाएंगे तो रुपीस में यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इससे देखिए दोनों देशों के नागरिकों को ये लाभ भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमीशन होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि पहले अगर आप इंडोनेशिया जाएं कुछ खरीदें तो पहले वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर भारत के रुपए में कन्वर्ट होगा और दोनों तरफ वो कमीशन डॉलर वाला लेता है, तो अगर डायरेक्ट रुपी और रुपया डायरेक्टली लिंक होगा तो वो कमीशन बच जाता है, दोनों देशों के नागरिकों को उससे फायदा होगा।
0: अम्बेसडर थायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी आज समझौते हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आजकल पूरी दुनिया में एआई का डंका है, तो एआई के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया आगे अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि एआई सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके?
1: आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये शताब्दी है 21वीं शताब्दी, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है और उसका एक रूप जो सामने आया है पिछले एक दो साल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नया टूल विश्व में समाज के साथ आपके पास आई है जिस पर मास्टरी करना बहुत आवश्यक है हर देश को जो भी आगे बढ़ना चाहता है, और इसमें भारत पहले ही बहुत काम भारत में हो रहा है, मिशन्स हैं और स्टार्टअप्स में तो भारत ने कई पिछले सालों से गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से बहुत मदद की जाती है स्टार्टअप्स में हमारे युवाओं को और हमारे इंजीनियर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। इंडोनेशिया भी एक युवा देश है, वहाँ भी 28 करोड़ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ रही है और युवा लोग अधिक हैं, वहाँ आगे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होगा और इसमें भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी को बीतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। तो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मुख्य अंश।
1: पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
0: अम्बेसडर तहल, इंडोनेशिया द्वारा इन दोनों जेस्चर्स को भारत की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए है, तो इन दोनों कदमों को आपके नजरिए में आप कैसे देखते हैं?
2: ये एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है प्रधानमंत्री का भी और भारत का भी। प्रधानमंत्री अब 12 वर्ष से दुनिया के पटल पर हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता के रूप में दुनिया देखती है। जो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, आज भी जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, और दुनिया देख रही है कि अब चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो अब जाके डायलॉग और डिप्लोमेसी पे इतना मारामारी के बाद वहां आ गए हैं। तो उसका भी सम्मान है बिंटांग आदिपूर्ण के द्वारा, और भारत का भी सम्मान है कि वो भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत और इंडोनेशिया का पुराना सिविलाइजेशनल एक जोड़ है, एक कनेक्शन है, और दोनों देशों का ध्येय भी एक ही है कि पूरा इंडो पैसिफिक, प्रशांत हिंद महासागर पीसफुल रहे और दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हर जो भी नेता दूसरे देश के जाते हैं उनको हर एक को ये ऑनर प्राप्त नहीं होता कि वो वहाँ के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस देश के नेताओं से जो भारत और इंडोनेशिया की मैत्री का संदेश जहां जहां से भी वो आए हैं, जो पूरा इंडोनेशिया वो संदेश वहां लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत विकास का रास्ता फॉलो करता है, एक्सपेंशनिज्म का नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने भारत के बारे में कही।
0: आखिर में अम्बेसडर तायर, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, क्या आप उन कदमों के बारे में बता सकते हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान इन संबंधों को और प्रगाढ़ और बेहतर करने के लिए उठाए गए हैं?
2: भारतीय महाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो जाएंगे, एक परम्परण मंदिर है, 1000 साल से ज्यादा पुराना है योग यकार्ता में, उसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने का जिम्मा उठाया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है। और अगर आप जकार्ता जाएं तो एक जगह वो श्री कृष्ण जी जो रथ और अर्जुन का रथ भी एक बहुत ही अच्छे जगह बहुत बड़ा बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति एक बहुत जगह बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा और उसको और ज्यादा लोगों के पास ले जाने का प्रयत्न है। और दूसरा, 1927 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इंडोनेशिया गए थे, उसकी शताब्दी 2027 में बहुत धूमधाम से इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह बनाई जाएगी। उसपे गुरुदेव टैगोर और इंडोनेशिया के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान था, उन दोनों के नाम से ये शताब्दी दोनों देशों में मनाई जाएगी।
0: अम्बेसडर तायल, आपने प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दिया है हमें और आपने हमारे साथ अपने विचार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी।

0: मोदी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंदर रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: सुर्खियों में

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में यारियां टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे यो यो हनी सिंह। अब आइए सुनते हैं फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मलयाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे ऋत्विक तलाशशीलकर और साथियों की आवाज़ों में। प्रशांत इंगोली ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से संवारा था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम में। अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: जसविंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ों में सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अन्नू मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है, ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
3: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
4: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
5: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
6: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
2: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा

0: चुकी है और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग।

0: ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರತಿ.
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहाँ अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल बिस्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

सन 1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपनी कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर यह गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनकी करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र 102 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरी T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।